0: आज मैं रिकॉर्डिंग हाँ कड़ी 13 मिनट में दिव्य राज्य कर और मैं किसने बाज रहे हैं ना मैं तो प्रोग्राम तो बेफुन मैं किसने आन रामिस
1: दें अलग नाफिज़ा मैं तो प्रोग्राम का मालूम अलग में वाह का दक्कम दानी कुरिया दाम विदायरा एक खंडे लोग गदारी फुलंग यही तेरी वनी की ही नहीं है ये मैं ऐसा मुफ्त के समय तो बेफुन ना नोट करे वे निगत अलग में नंबर की थी ने तीन हथरे सुमिंग है देंगो ती लवा रिक्वेस्ट करे वो है गड़ी फंसा हाँ हमें वो फुर्सत के वाह का बिदन वाली अलग में उम्मीद की उम्मीद स्वर ही क्या मुहरीत लवाए अड़ेविगिन दानी कमा
0: खबर नाफजा कहने तो लेने खबर दबर
1: खबर दबर अब बलालायर कर हमें दें ब्रेकिंग ने से कुली खबरें गई तो अलगन में विवागों तो मिदर नवाला नहीं देते एक मुख्य समा मुहिम खबर तेंगे बहुरी अलगन में समाल वांजे है रखा तेरी वांजे है कंधे तो गे वाह कतेंगे बहुरी वरना हिता हमारे कमरे का विस्मी ही गामी दिए देते
0: मिहार में अति और मैंने दें मैं हाईवे के ऊपर कतरे एक्सीडेंट हिंगा दें मम्मी है कुनिया दें और मैंने ताज़ी हम गए हमें एक्सीडेंट हिंगा में दूरी साइकिल का काल कहा जाएंगे बैठने वक्त दें एक्सीडेंट मालूम आत रहेगा गए घंटे का दिया कड़ी बार है आके रिपोर्ट को फिर आके और मैंने मालूम तलीफ Tengah di barat mungkin hendak khawatir sebab ni kita mungkin agak dinaikkan kuri bayar khawatir sebab ya memakar tak alman itu aku biar tiba fana kami kenaikan program ni malam kuri itu.
1: Nah, dalam esbaran ufair khawatir sebab ini kita kuri mesti alhaid alhaid ada mak board bandel di bayar tiba nuwah dos banduk of mesti mihar itu.
0: Ah, memang. Tentunya berdaya no bayar fana barat ufair kami kebawaan ini kita kuri ada dengan kami musim abeh kami idara ini bawa dalu itu raja ke musim ha nong kami itu. और मैं बारा विश्वनाथ जी है कमें में कमाल समाड़ डायनो देतो और मैं मौसम के में फाहु मालूम मत रहो करे भी आ कुड़े रुकले तेरे ती बेफुना हमें गनेस देना दें मिहा दो मिहा गुत्ते देने इतरो जाने स्प्रे की न्यूज़ से क्या धन्यवाद ने चेन में मौसम के मुहिम वाहक तक आ दी ती बेफुना और मैं फाहु मालूम मत निमादम करे गनेस देन देतो
1: Tenggalkan mengenam mewati hama hikmat ke wah kadak kalau hikmat terbas tak ki kome mihik gives teri orang muka itu terjiba tak ilmu hikmat ke macam bina ko punya fohunna wara mana fum wah kadak ke detto wara muhim wah kadak ke mifad wah kadak ngadu hagen algun meng teri orang batang kong ebohri kangkang ragal kurei fes detto ramis.
2: Hikmat terbas. Hikumet teri bahik gawe, kom me dua haki rangkal dua hakan we dane. Namais kom me dua hik gawes, kom me wis rangkal kame we.
0: Ademi wara mahima ingat hikumet teri bahik gawe oti, kom me dua haki rangkal dua hakan we dane. Namais kom me dua hik gawes, kom me rangkal kame we. Ingat dua setiap tu tapat kau me fener, kom me dua haki abad ufar wagut nuda kami abad dua hakan we dane kan, al me gabul kuran jehen. Ingat deng. Tuas kita memegos kondir nama sehingga tuan memimpin kuraka itu kan dan egitre mes kuda nama sufalde nuat aranggalu kami hodma baru elma sehingga tuan bahu kami waktu bola baru ala.
1: Hodma baru ala itu kebaca he kangkam fahy wisnu makum positif wisnu makum wisnan. Detto kangkam kami salah kanu baya belu muka badal kanu baya kodeku muka badal kah hingga kudi aranggalu kangkam muka basamal kandeng jeh. Dan mara khasa kami ramizmi kangkam muka syukur beri bu.
0: Detto alam baru wisnan jeh kami sehingga tuan alam na Adanya syukur beri bo mungkin tu barang muhim kami yang kita orang mi orang mana barang gina fahar hingga mana jeh barang gina kantat tak ada malu begini bah dekik ber orang mana lipah orang niumat tak kan noni orang mana lipah orang muhim kantat tak orang mana ufawa kantat tak ada ter syukur beri nuwe beham kami deto
1: deh dua sni begini dar orang mana kami barang bodoh samal kandeng jeh noni barang bodoh wisnala jeh kami ini dua aku di mami kami bes ranggalu kami kade teri fungko wisnala wisnalon deto ikamat tak syukur beri orang Ege pada kalau guna mana kurebe kamaki
0: syakwa
1: kurebe undetto.
0: Ehmwe me alun mem berab bisnan jek em nafsaane dolehyo kama berab beanun teri hibar de bunme gota mifah kurene deng waki khasa kame alun mem hitolai ngolai kama nuhinga andane do. Enas eh dua semulen kos fikinu inge toy. Eh dua berag gina muhimu kantat tak alun mem furihmu sehat tak dehetti witi se orang muhimu kabinu to. Me alun beanu berab fasaanu di bunu kian masal enu inge to. Ehmwe syukur berwan das kuramwan adi muhimu kantat ka dete ralun me wisnal njene
1: deto evidalun ite kommes ek kame rangala kurei fe
0: kommes
1: ne deto
0: kommes ek kame rangala befo kamaka dete wisnal da ngeto dos ne gendar adem ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಮೀ ದೆಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇದಾನ ಮೌಸಮ್ಗೆ ಫಹಮ ಅದು ಮಾತಾ ಕಿಹಿನತ್ತ ಮೌಸಮ್ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಫಾಕುರಾಣಿ ದೆತ್ತ.

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मिंदमो पार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हमें कनी दिवे राज्य के डूं प्रेजेंट करूं के दायराइंग मदर साथक के दरिवरूं के हुनेर तक कालों
3: शाय ऐदा हो उसको कैप्टन के मागाम लेबोंगेरो शाय कौन काले उस आस्था के खोरे वोने
4: हम वरा वरा उफाल
5: मजीदिया स्कूल के राज्य के निजामी थावलिम के मुन्नारो ऐ जमानी निजामी थावलिम के फैशन
6: अलगन में गे स्कूल का हिंगा कंतक तका अलगन में होदा फवा कामयाबी ता हिस्सा कुरंदी बे मी फुर्सत की अलगन में दारीवरुन नल्दी बे वारब बड़ो
7: वार कोडरो सुरस बड़ो बेर लवस अडो हावलं ऐ हिंगा गस अलगन लव के आहिवे
8: रमजु मी कौमी ख्यालो आवारी तिवी माले
9: अलगन डो इस्मा दान नल्दी नाफिज मी बद्दा कुलनी होरा स्कूल के प्रिंसिपल अमनत हरीशाया मैडम कहने तो हालो
6: अल्हम्दुलिल्लाह मदर साकु देंगे गाड़ी अलगन मेंगे वगुत
10: मी हिसाब मुशायन गामे लमा दहे गाडो हालो कहने वाणबा
11: इते मी फूरे नी रसूला हंदु मावे
2: एंगा सतरस तक सालिस नो 1 किलो हर्ट्ज मीडियम वेव आदि अड्डी हेनवे मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड दिवे हिराज जे गाडो
0: मदर साकु देंगे गाड़ी हुकुर दोगे हेंदुनो दिहाय जहार रिपीट होम दो घावीर हतर गड़ सारे स्वाकों आदि अंगार दो ग्रेगंड नुवाई जहर हमें कहनी दिवे ही राज्य गाड़ो
12: हेलो कब आमिया तो कहने
13: वारा रंगल
14: वारा फक्का हम
15: मिया तो यहाँ रंगले नो
14: वारा बलिको
15: देंगे कहाँ लगोते
13: हम वारा बेस्टो
14: दें यहाँ यहाँ नो
12: ehun teringe hala hual olum filwala wahaka dakkaluma
0: komme budu duai geregandu egar gadi sum minutuka tivirajje gadu genesteni
15: miyatu kihine
2: engha satarasteka 49 kilohertz medium wave adi 89 megahertz fm band
0: गाड़ी में दूर करे एक आरेख फाइनल मिनट आड़ों समती के दवनी दिव्य राज्य गाड़ो
2: दिरियों लो मान करे वनी मसले या हल्लों के मफ़ूम के मच्छा दे मफ़िरिए के दिरियों लोंगे हायातों का मसला नुचे ही दिओ मकी मुस्तहिल कमे विस्नालन जेह कमकी दे मफ़िरिंगे दे में दुगे जेह मसलते होगे शिकार्य का दारी नुहे दों ಫಿಕರು ಹಿಂಗಂಜೆಹೆನಿ ದರಿಂಗೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ ಜಿಸ್ಮಾಣಿ ಗೊತುಂ ಅದಿ ರೂಹಾಣಿ ಗೊತುಂ ವೆಸ್ ಹಶಿ ಹೇವ ನಫ್ಸಾಣಿ ದುಳೆಹೆವ ಕಮ ಸಲಾಮತ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಂ ಕಷವರು ಕೊದ್ದಿನುಮ ಗುರುಬಾ ವಾಂಜೆಹೆನಿ ಎ ದರಿನ್ನಕಿ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸುಗೆ ಇತುಬಾರು ದಮಹಟ್ಟ ಮುಷ್ತಮೋ ಗಬೂಗುರಾಫದ ದರಿ ಬೈಕಂ ಹೆದುಮ ದರಿನ್ನ ದಸ್ಕೊದ್ದೇಂವಿ ಹೂಗ ಹೇವ ಇಸ್ಲಾಮಿ ರಿವೆತಿ ಸಿಫತ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಮ್ಮಯಗ್ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಪ್ಪೆಗೆ ಲೊಲಾ ಹಿತುಗೆ ಫಿನಿಕಮ ಫೊಣಿಕಮಕಿ ಎ ದರಿಂಕಂ ಅಬದು ಮೆಹಂದಾಂ ಕುರಮ

0: গোয়েন মে প্রোগ্রাম গামে হ্যাঁ সামং হিসা কল্যাণ
1: হিতাকুগে মামিলামিলি
2: আইলি গুলম বাদেহি মাবারা গিনা কান্তত হাসিল হেগেন্দে এমে বলকাম কিমে আন মিসালক কুদিনা দসবেগেন্দে মি আইলা তে রেগবে সুলেতা পাত মিজাজিত হগে মি হোনা ক দিরি উলঙ্গে বেঙ্গে দেন অনিকা দিমাওয়া কান্তত হগা এক ক অনিকা কিগে হিতেরি কান বর পোডলি বিগেন্দে মিয়া দারিম বড়তি কুরম গ দারিন না মি হান মিসালক কিয়া দেবেনে মি হার মামা কা ফ হিগে মিজাজিত কা নুনিয়া দেন আইলা গউলে হে মি হুঙ্গে মিজাজিত কা মি হুরি হাচে বেস পুদিনা দস বেগেন্দে দেন এমে বড়ং আনি হে ফাহাক কুরে বে কামকি বড়তি কান্তত দিমাওয়ায়রুগা বড়তি হাদিসাতা দিমাওয়ায়রুগা নুনিয়া হাম কুল্লে কা দিমাওয়দান মি হামছ কাড়ুগন নড়ুগন কে তিবেন হাতারুগ দারিন তিবেরুগা আড়ুগন হাম কুল্লে হালত দিমাওয়দান বর বড় বালবেস কে দানে নুনিয়া কুল্লে কা হাম হে হাদিসা দিমাওয়গ তানক ফুরা দান জে দানে এপদ হালত দিমাওয়ে চকল আইলি গুলুম গ সাবাবুং এমি হুন নান গে ফারাত লিবেনে মি হারে এহি তরিক মি মি আড়ুগন হাম মি দেতরে বেস মি কালগ হাদিসা দিমাওয়গ বেগ সম কুল্লে হালত গ হাম মাম ফুরা গ দান জে হুন হালতুগা একল আইলি গুলুম গ সাবাবুং পুরি হাম মে বেস তিবে এহি তরিবা বেনমণি কমি হেগে হি তরিক মে তো বেনমণি কাকু তো আন্নাম বি কাকু তো মি গোতা এ কুদিন এহি তরিবে দে হুনানি এই হাম এহি তরিক বার বড লিবে দে হাম আইলি গুলুম ওতিমা কমে কামে দিমাওয়িয়স
3: এখানে হরে বড়ুয়া কুচ্চক বড়ু আয়লাগে তেরে হরে বড়ুয়া কুচ্চক গিনা মিহুন গে ফারাতুন লোবি বেসলিবে গে দানে আদি এ কুচ্চক গিনা মিহুনা এতি উলেন দসওয়ানে ইসরাম কুরুম বেস গবেল সর বড়ুয়ানে এ গিনা মিহুনা ইসরাম কুরুম দসওয়ানে গিনা মিহুনা এ কুয়েরি সম্বাবানে আনি কা গিনা মিহুন গে লোবি লিবুম এ কুচ্চায়া গন্নানে ekuja ekiba sehem mihum bala ganna sala kutchekkam ve sekuja gawul kurane ekama ekani hunna kujaya e hama vara bodusan tafatu ane ekani ekani family ek bi bodwa kujaka emme ge paratun libe no bi madu ane komu ge sevya
4: mama men ka pa men ade pale family hun ade cousin men do emi hunna gulum badahim wagata ki kudinna vis vara ek bala ganave emi hun sala sehte kilima ನೀ ಅಳಗಲು ಮಿಂದಕ್ಕೆ ಹಮ ವರ ಲೋಬಿವಾ ಬೈಕ್ ಅಳಗಲು ಮಿನ್ನ ವರ ಎ ಸಿ ಗೌಳೆ ಅಳಗಲು ಮಿನ್ನ ವರ ಎ ಜಿ ತೆರಿವಾ ಬೈಕ್ ನೀ ಅಳಗಲು ವರ ಫಾಗ ಕುರುವೆ ಕಮಹಿ ತಾಯಿಲಿ ಗುಳು ಮುಖ್ಯ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ ವರ ಬಡ ಪಾರ ವಳ ಕಮೆಂದಿತ್ತು ಬೆಂಗಿ ಹಿಂದಿಗೆ ನಿಹಾರ ಎಕ ದಿನ ಮನ್ಹದಿಗೆ ತೆರೆಯಂದ ನಿಂಗೆಂದನಿ ಆಯಿಲಿ ಗುಳು ಮಗನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ ವರ ಬಡ ಬಾರ ವಳ ಕಮ ಎಕ ದಿನ ವರ ಬಡ ಹಿಂಗ ಮಗು ಮೆನೆ ಬಲಿದೆ ಆಯಿಲಿ ಗುಳುಂತ ಎಗುತ್ತ ನಿಹಾರ ದನ ಗೊತ್ತಿವಾ ಆಯಿಲಿ ಗುಳುಂತ ರಂಗಳ ಇದನ್ನ ಅಮಿಲ್ಲ ನಕ್ಸಮ್ಮಿಯನ್ನ ಇತುಬಾರ ಬೊಡುವೆಗಿಂದ ಅಳಿಗಳು ವರಸಾಗಿ ಕೊಡಿದೆ ಆಯಿಲಿ ಗುಳಿಂತ ಇವತ್ತ ಹರಿದಣ ಆಯಿಲಾಟಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಸಿದ್ದು ಅನಿಸ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವರ ಅಮಿಲ್ಲ ನಕ್ಸ ಇತುಬಾರ ಓಕುಮ ಲೋಬಿ ವಿಕಮ ಹೆಮ್ಮಿನ ಇತಿರಾಮ್ ಕುರುಮ ನಿಕ್ಕಂಕ ಅಳಗಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಹಗವೇ ನಮ್ಮ ರಂಗಳು ಕಲಿಸದ ಕೊಡಿದೆ ಬಾಕಿ ಬಾಕಿ ಆಯಿಲಾಟ ಮೇ ಬಾಕಿಂದಿರಿಯೊಳ ಮುಂದಾಯರುಗ ಆಯಿಲಿ ಗುಳಿಂತ ಕುದಿನಕ ಬುಣದೀಪೈಲಿ ಬುಣದೇಪಣೆ ಸೀಮದ ನಿವಾಗತಿ ಆಯಿಲಾಗೆ ನೀರುಣ್ಣ ಚೀಕು ಬಾಕಮೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ ದಿನ ಅಪದೇಶಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಿಪಣೆ ಆ ಈ ತಿಮಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಕದೆ ಹೇ ಬೈಮೇಲೆ ತಿಮಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಕೊಮ್ಮೆ ನೆನೆ ಹುಣ ಕದೆ ತೆರೆ ವಿಶ್ರಾಣಿ ಕಮ್ಮೆಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ತಿಮಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರಿಯರೇಕ ತಿಮಣ್ಣ ಮೇಲೆ ನಿಜವೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಹಿರಾಕ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಅಳಾಲಾಕ ಸೇಗುತ್ತ ಅಷ್ಟು ವರ ಬಡ ವಿಸ್ಮಿ ತಗೊಂಡನಿ ಎಹಿಂದಗೆ ಕೆಲ ಸಾಹಗವೇ ಅಷ್ಟು ಲೋಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಮಗೆ ನಿಶ್ಚಿಪ ವರ ಬಡ ದವ್ವೆಗೆಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾರ ಅಳಾಲು ಮಾ ಲೋಬಿ ಯೋಗಾತೆ ಕಮ್ಮಿಪ ಮಡು ಮಡು ಕುದಿಂಗ ಸಿದಾಯ್ ನೆತಿಗೆಂದ ಆಕಂ ಸಾಹದ ಕುರೆ ಮುಸ್ತಕ್ ಬಲವೈ ಹುರಹಕವಣಿ ಪ್ರಥಮ ಕಮಕಿ ಆಯಿಲಿ ಗುಳುಂತ ಬಮ ಅಲ್ಲೋ ಸುಭಾನ ಹುವ ಸಾಲಾವ ಸಂಗವಾಸವೇ ರತೂಸಲು ಹಲೇಸಲು ಮೆಕಮ ಬಾರ ದೆಬ್ಬಾ ವರ ಬುಡ ಬಾರ ದೆಬ್ಬಾ ಸರಿ ಬೆಂಗ್ ಅದಿಹಮಯಕ್ಕೆ ರಹಿಮಗಳು ಕಂಡಾಲು ಬ್ಯಾಕಮಾಭಿಯಾಗಿದ್ದರು ನಬವೀರ ಶಾತ್ ಗಮ ಏಗುತ್ತ ಸಾಹಸ ಕೊಪ್ಪ ಬವೇಡ ಸಾಹಸ ಕೊಪ್ಪ ವಾ ಇರುಗ ಆಯಿಲಿ ಗುಳುಂತ ಬಟ ಹೇಳಿ ಕುರೆ

0: फिना दत्त बदल कोली कोंकुचका तन
1: लूना
0: लूना क्या कुचका वाह करेगी तो ऐ म लूना है कि कोंकहाला कंतत्त के कुरा कुच्चे
2: दिवे
1: दिवे
3: दिवे
1: दिवे
3: ही कुरा कुच्चे
4: कदक्का कुच्चे
0: दिवे ही बहुम वाह कदक्का कुच्चे ऐ म लूना है कि दिवे ही बहा
1: लोभी
0: कुरा कुच्चे ऐ मीमा दिवे ही बहा लोभी कुरुम के कोतुं लूना कोंगुले नी कों कंतत्त के लूना कंत कुरीगोत मिकुदीन कुरेवे कमकी को
5: लियेने दिवही बहु
0: दिवही बहु लियो
4: दिवही बहु बादी क्यों आदि मादा है क्यों
0: माँ दिवही बहु लिए फुने ची क्यों मिसाल का बांधी मादा हादो मिफदे ची वाह कई ची वेस कुदिन क्यों दो मिकुदिन मिकोता कांता तक कुरंज्यामो दिवही बहा मिकुदिन वारा मोड़ो आने दो इन्शाअल्लाह

0: शुक्रिया।
1: हाँ दरी थी बंजे केंगे की के तमी बंदी गमी किया नी कुंभा के मी बुना नी
0: किया वाशे गौस कुदिंग उड़े गोता नूले न में
1: आ मी कुदिंग मी बुना नी मी कुदिंग किया वान में दो एम एहिं गौस कुदिंग खुरा कांतत तके नुकुरा न में दो
0: अधि मामा बप्पा बुना गोता मामा बप्पा एदे गोता किया वागे मुड़वान
1: मम्मी या बप्पा इदला बा गोता किया वागे मुड़कुचका वाम मी बेन मणी दो
0: लब्बा
1: रीति बंजी ता दो ए मी कुदिंग मी गोता कांतक पुरे वेने ता कुरिया कुदिंग में
0: लब्बा
1: वरर रंगल शनाया दें किया दे म्योलेनी
2: वाहके
1: अवंगा पुरी दमा दो
2: मे वाहके आगे नमकी कुड़ा कुड़ा फुल्ला एद्दुआ को उलुनी कुड़ा कुड़ा फुल्ला ए मे फुल्ला उलेनी फुल्ला गे मम्मा याए को फुल्ला फुल्ला गे मम्मा देखे वरल्लो बिवाने एं कमु फुल्ला गे मम्मा वेस फुल्ला देखे वरल्लो बिवाने मी वरट चरी का ही वा फुल्लाए फुल्लाया फुल्लागे मम्मा फेंबो कोरगे अने फरात गुआहुना अने मीरु मीरु बोड़ेती चरी गस्ता कम्मे दुआ कोस फुल्लाया फुल्लागे मम्मा दान चरी बिन्ना एकमा को दानी हावीरु गड़ेगा तिया को दिन इंगे तो एक ही विकं ऐ ऐंगड़ी तकुगा कोर वतरे गाउन्नड बोडु बोडु नुरक्का किंबूता मि किंबूता उलेनी कुड़ कुड़ फुल्ला कालं एद्दुआ कु कुड़ कुड़ फुल्ला वर बोड़ चेरी काहि विज अदि मम्मा कैरिय गोस बुनले
3: मम्मा मम्मा अलकन वर बोड़ चेरी काहि विज इंग चेरी बिन्नंदमा
2: मम्मा बुनसि दरिफुला मैं गड़ी गया थी धाने कमेंट नहीं एक कल बड़ो किम्बोले नहीं दरी फ्लोका लं अधि दे कुड़े लं कुड़े कुड़े फुल्ला नूने के बड़ा काफ़ा बुने फ़ागोस दुव्वे गने फ़ागोस फिंको राही साबा हुट्टा ले अधि ही तंगेरी अलगनो कीने फिंको रुगे अने हिसा बद्दे वैनी एहम बुनी रख कोर तेरे गाँव बड़ो बड़ो किंबले बोहिल्ला फबुनी कुड़ कुड़ फुल्ला हादा हा चेरी का ही दिन थी उलेनी अलगनों की बुरे कश मच्छा अरागिंग हिंगा दामा कुड़ कुड़ फुल्ला किंबु के बुरे कश मच्छा अरंग उलेनी को मम्मा फा तुम दुए फा गुस्से बगोआ दारी फुला आधे आधे मम्मा बुने मैंने नो दाशे अधि कुड़े कुड़े फुल्ला के मम्मा ऐस कुड़े कुड़े फुल्ला दामा गनफी एका मको कुड़े कुड़े फुल्ला के ऐसा होती किंबोगे अंग तेरेगा वरक गीना ले या कुड़े कुड़े फुल्ला वरक बार रोवे मु मम्मा के उंगु गावे बुने मम्मा मैं आलू के नो मम्मा बुना गए ने नी मधिमा वीता में वरी कामे मीगे फाउंगलुगनु मम्मा बुना गोता हादान कुदिन्ने तिकुदिन वाने तिकुदिन ये मैम बफैंग अधि मुदर रिसुंगे बुना गो हादं नुवता कुड़ कुड़ फुल्ला दिमावी काला हिता मेवरी घमे दिमावे दाने शुक्रिया
1: हादा हा मोले माशाल्लाह तिगोता वाक तक किया दी हादं ता बदवस किएगा
0: लब्बा स्कूल का बस मादा किया बस आदम
1: वर रंगल है माँ वर रीति देवाह का डूबी जमीयत के प्रोग्राम का देखो दिन वेगें वर रीति बंजे किया दी फिर तो है जमीयत के प्रोग्राम का वर गीना कांकां कोरे भी जेदो
0: लब्बा